0: यार बड़ा अच्छा गीत है जी। 7711 हेलो
1: क्या हाल भाई जी?
0: ठीक है वीरे, किदा
1: बढ़िया जी? बस एक गाने जी पर मैच
0: कर करो जी, दसो।
1: गाने का नाम डाकुआ दी भैन बाय हैरी डाका।
0: की दी भैन?
1: डाकुआ दी भैन।
0: डाकुआ दी भैन क्या बात है। अच्छा गाने का टाइटल ही यार बड़ा खतरनाक है।
1: नहीं नहीं टाइटल नहीं खतरनाक, बस ना पॉलिटिकल लीडर ने पोर्ट्रे किया होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर होंगे
0: उन्होंने
1: की भैन रखा गया जे डाकू उन्होंने कंसीडर किया गया। गाना बहुत वधिया है, मैं चाहना जी सारे सुन लेने।
0: नहीं है की दा कोई थोड़ा गाना है? देखिये मेनू पता सीगा भी या तो थोड़ा लिखिया होना या कोई थोड़ा गाया होना। ठीक है, थोड़ा नाम है निर्मल सिंह गिल है? ओके, गाने च कोई है कोई गाल गुलदा नहीं हैगी? हेरी दाखा है। अच्छा मुंडे का पिंड है दाखा? अच्छा ढाका, ठीक है ओके ओके चलो ठीक है वीरे, कोई ना ला दें। बहुत ही हाई एंड बड़ा प्रोफेशनल रीहैब सेंटर है दयालपुर कपूरथले। किसी नशे की एडिक्शन है, नशा नहीं छड़िया जा रहा, तां तुसी कॉल करो 99-151-54-548 99-151-54-548। सिंपली इंडियन स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ते रोज जदों मर्जी जाओ ते सिंपली इंडियन ते बाय वन गेट वन चना भटूरा वेज बिरयानी अमृतसरी कुलचा चाट पापड़ी एक किलो ते दूजा नाल फ्री। ठीक है, सो सिंपली इंडियन 275 गार्डन ब्रुक ट्रेल गार्डन ब्रुक कैसलमोर या 85 माउंट पेलियर स्ट्रीट मिसागा फाइनेंशियल या 15 फेंडर वे बवेड एंड शिंक्यूजी सिंपली इंडियन। थोड़े अगर अपलायंसिस दी रिपेयर होने वाली है फ्रिज स्टोव डिशवाशर वाशर ड्रायर कोई गल नहीं, नवे लगाने की नहीं लोड़ होंगी हर वक्त, तुसीं अपलायंसिस दी रिपेयर कराओ ते उहदे लई नंबर है 647-622-3203 अपलायंस रिपेयर। मिस्टर प्रदीप प्रदीप जी के नाल गलबात तुसी जरूर जरूर जरूर करो। तो मनप्रीत ढींसा साढ़े हज़ारा लिसनर्स की इंश्योरेंस ऑटो तो होम तो कमर्शियल इंश्योरेंस घटा के दिती है मनप्रीत ने। मनप्रीत का नंबर है 416-500-1818 तो जरूर कॉल करो। सो एक होर गीत की मैं ऑनलाइन रिक्वेस्ट आई, वो लाने फिर गाना लावांगे वीर होना दा लिखिया ते वी विल बी बैक।

0: 29915 अर्जेंटिया रोड मिसिसागा ड्रीम होम अप्लायंस।
1: उड़ान ते अपने बिजनेस नु करो प्रमोट। आज ही अपनी एडवरटाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा नु 4378700001 4378700001।
2: देखो जी करता है अपना नंबर वन पर मेरा दिल करता है अपना कर सारे तो सोना हो भी
3: बस इन्नी गल हुक्का।

0: ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां ढिलियां रहिंदियां की करां
1: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
0: इत्थे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवें स्टाइल दियां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध वी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
1: कॉल करो जे एंड गैरी नूं
0: 905-459-5533
1: 905-459-5533
0: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੇ ਏਜ਼ਡ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ, ਤਾਂ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-242-3158। दुनिया विच किते भी घूमन फिरन लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन
5: स्टारगेट लॉजिस्टिक्स नॉर्थ अमेरिका दी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी हायर कर रहे ने एजेड ड्राइवर्स जेकर तुहानू भी है कम दी पाल ता आज ही संपर्क करो स्टारगेट लॉजिस्टिक दे नाल वर्क लोकली या क्रॉस बॉर्डर सर्व कर दे ने GTA मिडवेस्ट मॉन्ट्रियल ते नॉर्थ अमेरिका दे विच स्टारगेट लॉजिस्टिक आज ही कॉल करो 905-564-9992
4: ओ जी हुण तुसी भी देर ना लगाओ ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स मीट चिल्ड बियर डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो देर रात तक हफ्ते दे सत्तो दिन खुलता है तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-913-1666 905-913-1666 या पहुंचो 11665 मैकवीन ड्राइव मेफील्ड दे नुक्कर ते
6: CCCA लई कर्जा माफ करवाना बस इना ही आसान है कलेक्शन कॉलां पावर सेल नोटिस क्रेडिट कार्डां दा उधार सरकार वल्लों टैक्स दी मांग तुसी इना सब तो ही बिना बैंकरप्सी कीतेया छुटकारा पा सकदे हो
7: जे तुसी भी कर्जे तो परेशान हो तां तुसी हुणे ही सानू कॉल कर सकदे हो असी तुहाडी परेशानी दूर कर सकदे हां
6: कर्जे तो परेशान असी करांगे काम आसान
4: हर तरह दे टेस्टी इंडियन फूड अते स्वीट्स ले याद रखो द्वापा स्वीट एंड रेस्टोरेंट
5: चार लोकेशंस तो तानू सर्व कर देने 100% प्योर वेजिटेरियन ते फ्रेश फूड एंड स्वीट्स ले द्वापा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट करो डाइन इन टेक आउट टिफिन सर्विस दे नाल नाल केटरिंग अक्रॉस GTA बल्क ऑर्डरली साडी फैक्ट्री विजिट करो टॉप ऑटो कोलिजन प्रोवाइड कर देने फास्ट कोलिजन रिपेयर एंड ऑटो पेंटिंग जॉब्स कंप्लीट कोलिजन रिपेयर फ्रॉम टोइंग योर कार टू अप्लाइंग द फिनिशिंग टचेस यू कैन काउंट ऑन अस वी आर प्रोवाइडिंग एंड टू एंड असिस्टेंस 24 घंटे टोइंग सर्विस अवेलेबल है हर तरह के इंश्योरेंस क्लेम्स नाल डील कर देने कंप्लीट कोलिजन रिपेयर एंड कार पेंटिंग टॉप ऑटो कोलिजन
8: एक बार फिर प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੌਰਥ ਤੇ ਕਿਆ ਲਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ
9: ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਂਡ ਯੂਅਰ ਰਾਈਟ 2025 ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।

मेरे काज करे मेरा सतगुरु, मैनु चिंत ना कोय, करने हारा कर दापे, जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। तुसी सुन रहे हो तुहाडा अपना रेडियो शो रेडियो आवाज, ते मैं हाँ तुहाडे नाल संतोष कौर, ते तुहाडा सारिया दा निग्गा निग्गा स्वागत तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज ते।

0: जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: License number 10394.
2: Are you paying too much for insurance? Let me help you save. Whether you need auto, home, truck, or business insurance, I compare quotes from multiple insurance companies to find the right coverage at a competitive price. For fast quotes, personalized service, and coverage you can count on, you can call or text me at 647-919-1002.
3: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: रेव सिंह कैनेडियन जंपल साडा अपना रियल्टर, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वास्ते पूरी हिस्ट्री कट के प्रॉपर्टी दी पूरी खोज करने तो बाद फिर तुहाडी प्रॉपर्टी लिस्ट कर देने। रेव सिंह होम लाइफ सिल्वर सिटी दे एक्सपर्ट रियल्टर रेव सिंह। रेव सिंह दी तिक्खी नजर तुहाडी प्रॉपर्टी वेचने दे खरीदने विच तुहाडी हेल्प कर सकती है। नवे प्रोजेक्ट दे माहिर अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दे एक्सपर्ट रेव सिंह नु फोन करो 647-740-9600 दे कॉल की जा सकती है। तुहाडा अपना रियल्टर रेव सिंह।
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े, इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900।
4: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
5: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers।
2: A to Z किचन कैबिनेट, भाई वाह क्या किचन कैबिनेट तैयार करदे हन। लक्की भाजी दीआं बनीआं किचन कैबिनेट देख के गुआंढी भी बहाने नाल तुहाडे घरे आउंदे हन। शीशे नाल भरीआं किचन कैबिनेट वास्ते, डिजाइनर किचन कैबिनेट वास्ते A to Z किचन कैबिनेट 416-720-7073, 905-720-7073 ते कॉल कर सकदे हो।
6: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
7: Toronto's number one station, AM 530.
8: Punjabi Versa!

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: Pehla aaya si badi mohabbat di thi, umeed kar raha is baar bhi tujhse aashirwaad dogi.
2: Main aa ja do main nal nachiye, nachiye paanch paapa. Main aa ja do main nal nachiye.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647.
3: This is AM 530. CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
4: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल.
5: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल.
4: इंडिया दी टिकटां चाहिदियां सी.
5: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटां ले लो. इंडिया किथे जाना?
4: चार टिकटां दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी. मिल जानगियां?
5: मिल जानगियां, बिल्कुल मिल जानगियां. दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है. बस दसो की टिकटां कदों दी चाहिदियां ने. ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने.
4: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स लई इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल. बुकिंग लई अज ही कॉल करो 905-678-1200 905-678-1200 Kataria Tours and Travel.
6: 32, 55, 80
7: 98
6: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
7: काउंटिंग नहीं, ये ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने. इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते, 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने.
6: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bove Drive near Chingozi. Call 905-450-2828 905-450-2828 अठाई अठाई.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी अगले दो घंटिया विच नैशनल इंटरनेशनल खबरां नाल तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के एक बजे वतनों दूत तुहाडे लई पेश किया जाएगा, सुखी निज साहब आउणगे और उदे नाल नाल साडे स्टूडियो दे नंबर हुण तों लैके दो बजे तक रहणगे 9057990999। छतरी छाता रिपोर्ट हाजिर है जी। अज सूर्य सिंह 652 दे बाहर आया, 736 ते चले जाणा। मामा चंद सिंह ए लवारस जिहा हैगा, 7:24 ते आ गया सवेरे ते 743 ते चले जाणा। कहिंदे आ चंद रात नूं चढ़दा, रियली। खैर, अज दा तापमान 24 डिग्री रहेगा, सूरज चमकदा रहेगा। कल नूं 26 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड। संडे नूं मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड 27 डिग्री। मंडे नूं 22 डिग्री तापमान रहेगा, सूरज चमकदा रहेगा। और ट्यूजडे वेनसडे दोनों दिन बदलवाई नाल हल्की हल्की बारिश पेगी, तापमान 24 डिग्री। स्पोर्ट्स दे विच अज ब्लूजी वाले भी खेलणगे, शाम नूं थोड़ियां गेमां रह गईयां और दे आर वन गेम बिहाइंड इन अ प्ले ऑफ। कल मैच शुरू हुए है जी अपने NFL दे, सैन फ्रांसिस्को 49ers ते LA रैम दी जिहड़ी गेम आ मेलबर्न आस्ट्रेलिया च होई, और उत्थे 49ers 27-7 दे फर्क नाल जित्ते। जिहड़ी सेंट्रल बैंक है 21 यूरोपियन मैंबरां दी, उन्होंने आपदा इंटरेस्ट रेट 0.25% वधा दित्ते ने। यूक्रेन तो जलेंसकी इत्थे आया सी। यूक्रेन अते कैनेडा ने 100 साल लई एक डील बनाई है, जिहदे विच मिलिट्री पोलिटिकल फाइनैंशियल सपोर्ट कीव अते इस लई होएगी। ये जदों भी आउंदा यार पैसे लैके चले जांदा, कोई डका करदा नहींगा। पता नहीं किन्ने मिलियन कैनेडा ने ऑलरेडी इहनूं देते।
1: लोनियो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब, चेते आहे ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 जा quicktrucklube.com। QTL, because we care. Quick Truck Lube, are you
0: ready? Ikka Junction lay 647-429-4040. Catering karoni hai choti vade function lay, no problem. 647-429-4040. Live cooking karoni hai kare, no problem. 647-429-4040. Tusi inna de banquet hall ya lounge vich choti vadi party karni hai, no problem. 647-429-4040. 647-429-4040.
2: Culture of Punjab is sponsored by Airport Nissan. For the best deals in Brampton, come to Airport Nissan at the corner of Airport Road and Queen Street, or call
3: 905-794-4667।
0: मॉर्गेज सॉल्यूशन दे

0: 32, 55, 80, 93, 81
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: ओ, काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते,
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी। कॉल 9054502828, 905-450-2828।
4: ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੇ 416-677-0609। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰਮ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਹੈਵ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਡੇ, ਹੈਵ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੀਕਐਂਡ।

0: तो सवाल ये कि वो कॉस्ट कहाँ है, क्लोजिंग कॉस्ट कहाँ जाएगी? तो क्लोजिंग कॉस्ट आपको अपफ्रंट नहीं पे करनी, आपको एट द टाइम ऑफ जब टर्म पूरा हो जाएगा, चाहे वन ईयर टर्म हो, चाहे टू ईयर टर्म हो, चाहे थ्री ईयर टर्म हो, टर्म के आखिर टाइम पे करना है, नॉट इन द बिगनिंग. सो आई रिपीट माई सेल्फ, वो होम ओनर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि रीजनेबल प्राइस हो, मंथली पेमेंट बहुत आसान हो, छोटी किस्त हो, जो जिनके पास अप्रेजल देने के भी पैसे नहीं है, या वो अपने आप को दे डोंट वांट टू गो इनटू दिस ऑल एक्सपेंसेस, नो अप्रेजल फी, नो लीगल फी, नो अपफ्रंट क्लोजिंग कॉस्ट. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है 6.99% इंटरेस्ट रेट है, पेमेंट भी बाई वीकली है, छोटी पेमेंट है, चाहे 100,000 चाहे हो, चाहे 200,000. इसमें दो कंडीशन है, मिनिमम अमाउंट 10,000 है, मैक्सिमम जो है 250,000 है
1: जी,
0: राइट. पहली बात. दूसरी बात है कि क्रेडिट स्कोर किसी एक का मिनिमम 600 होना चाहिए. अगर आपकी स्पाउस का अगर 550 है और आपका 600 है, वो चलेगा. दो चीजें. तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, घर में इक्विटी 75% तक होनी चाहिए. और आपके पास ये आंसर्स हैं सारे, आई एम हेयर टू हेल्प यू. अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग सेकेंड मॉर्गेज आपको परेशान कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, 12-14% है, उस पर हर साल आपको फी देनी पड़ रही है, अगर आप छुटकारा चाहते हो, आई कैन हेल्प यू. आई कैन रिप्लेस विद 6.99% इंटरेस्ट रेट, नो लीगल फी, नो अप्रेजल कॉस्ट. Within 5 business days, the money will be in your account. This is Mukesh Chauhan, mortgage broker from Mortgage Diligent. Number to call me 647-512-7000, 647-512-7000.
1: ओके मुकेश जी, ये तो बात आपने करी कि ठीक है, अगर किसी को है ना, अगर स्पेशली अगर इस टाइम पे अगर कोई इंडस्ट्री है, जैसे कोई ट्रकिंग इंडस्ट्री है या कोई वैसे बिजनेस ओनर्स हैं हु आर जस्ट स्ट्रगलिंग है ना, तो आप उनके लिए अगर उन्हें फंडिंग की जरूरत है, बिकॉज इन द बिजनेस टू रन द बिजनेस वी नीड द मनी है ना, सो फंड्स इज ऑलवेज एसेंशियल. सो आप कैसे उन्हें अर्जेंटली फाइनेंसिंग करके या कैसे करके आप उनकी जो है मदद कर सकते हो, अगर हमारे इस टाइम पे ट्रकर भाई बहन या कोई और बिजनेस ओनर सुन रहे हैं? बिल्कुल जी,
0: देखिए टैरिफ की वजह से ना ट्रकिंग इंडस्ट्री बड़ी इम्पैक्ट हुई है, एज वी ऑल नो, राइट. इसके अलावा साथ साथ इमिग्रेशन इंडस्ट्री भी है, आपकी जो है रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री है, वो भी इम्पैक्ट हुई बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. अच्छा, इन इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये आया है कि इनको अगर आप बैंक से फाइनेंसिंग लेने जाओगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आई एम टेलिंग यू द राइट इस इन्फॉर्मेशन. तो चैलेंजेस का मतलब ये नहीं कि आपको मॉर्गेज नहीं मिलेगी, मिल सकती है, बट चैलेंजेस बहुत है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. बट गुड न्यूज ये है किरण जी, अगर आप ट्रकिंग इंडस्ट्री में है, आप इमिग्रेशन बिजनेस में है, आप फूड इंडस्ट्री में, आई कैन हेल्प यू टू अरेंज द फाइनेंसिंग. चाहे रीफाइनेंसिंग है, चाहे लो क्रेडिट है, बैड क्रेडिट है, कंज्यूमर प्रपोजल आपने किया है, बैंकरप्सी है और आप निकलना चाहते हो, घर में इक्विटी होनी चाहिए. आप ये देखें 80% तक आपके पास इक्विटी है घर में, मतलब आपका अगर मिलियन घर है तो 7 लाख का लोन होना चाहिए और 1 लाख निकालना है, तो 80% हो गया ये, ठीक है ना, अगर है. और दूसरी बात ये कि घर की वैल्यू चेक करवानी है, अप्रेजल आपको करवाना है, अप्रेजल के पहर देने के लिए दिक्कत आ रही है, आई कैन बीइंग अ ब्रोकर आई कैन हेल्प यू. आप जो भी फी पे करेंगे, रीफाइनेंसिंग की बात कर रहा हूँ, आप जो भी फी पे करेंगे ये आपको कॉम्पेंसेट होगी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग. अप्रेजल कॉस्ट विल बी रीइंबर्स्ड बाय फ्रॉम मी एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग. तो ये आप इसकी चिंता मत करें, ये इंपॉर्टेंट है. आपके पास अगर डेट्स है, बहुत इंटरेस्ट पे कर रहे हो, दो दो साल से क्रेडिट कार्ड डेट्स पाइल्ड अप हो चुके हैं, प्रॉपर्टी टैक्स बिल नहीं पे किया आपने, और जो है मल्टीपल डेट्स की वजह से घर में सेविंग नहीं हो पा रही, देखिए घर की सुख शांति बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब आप जब कर्जा सब एक जगह लेकर आ जाओगे कम इंटरेस्ट रेट पे, ऑटोमेटिकली घर में सेविंग आएगी, घर में भी शांति होगी, हैप्पी लाइफ, राइट. और साथ साथ जो है अपनी चीजों को आप मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे. मैं बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेट केसेस करता हूँ, मिस पेमेंट है, मॉर्गेज मिस पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस्ड है, आई हेल्प, मैं पर्सनली आई टेक लॉट ऑफ टाइम और उनको मेक श्योर करता हूँ कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिले और प्रोडक्ट आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मिले. 100% कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, बट आई विल मेक श्योर कि आपकी जो नीड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मिले, आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी सी और जो है पॉजिटिविटी आए, सेविंग होना शुरू हो जाए और ये इस सिचुएशन से बाहर निकले. वंस अगेन मैं मिसेस आगे मैं होता हूँ मिसेस आगा रोड और डेरी पे. आप मिलना चाहें सैटरडे को सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ, 12 से 2 बजे तक. अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 6 PM मिले, मुझसे बातचीत करना चाह रहे हैं कॉल टेक्स्ट करें. दिस इज मुकेश चौहान मॉर्गेज ब्रोकर फ्रॉम मॉर्गेज डिलिजेंट. नंबर टू कॉल मी 647-512-7000 6475127000. Once again, Kiran ji, happy Friday aapko aur aapki team ko.
1: Bilkul ji, thank you so much Mukesh ji for sharing the information with listeners and you too enjoy the weekend. Thank you so much.
0: थैंक यू सो मच.
1: बिल्कुल जी, मुकेश जी के नाल गलबात हो सकती है 647-512-7000 647-512-7000 ते तुसी इना दे नाल जेड़ी है जी गलबात कर सकते हैं. और साडे नाल इस टाइम होम्योपैथी दे डॉक्टर अब्रार हुसैन पहुंच चुके ने स्टूडियो दे विच. थोड़ी जी आपां इना दे नाल भी गलबात करदे हां कि अज केड़ी जेड़ी जी चीज ते गलबात करेंगे. स्वागत है डॉक्टर साहब
2: जी. सभी बहन भाइयों को स्वागत. और मैं हूं अब्रार हुसैन, रजिस्टर्ड होम्योपैथ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर. आज हम बात करेंगे फैटी लीवर पे. फैटी लीवर जो है ये एक लीवर की बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ है और इसमें इन्फेक्शन से ज़्यादा आपकी मैनेजमेंट असरअंदाज हो रही होती है. ये जो सिडेंट्री हैबिट होता है, सिडेंट्री मींस के आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आप जो ये जंक फूड है ये ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप ऑयली फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वजह से आपके जिगर के ऊपर फैट सेल जो है वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, बैड फैट जो है कोलेस्ट्रॉल. और अगर ये हालत बिगड़ती जाए तो फिर ये फैटी लीवर नेक्स्ट स्टेप में स्टेप्टो हेपेटाइटिस में बदल सकता है. ये अगर मजीद इस पे भी ध्यान ना दिया जाए तो ये फाइब्रोसिस में और फाइनली सिरोसिस ऑफ लीवर जो कि नहायत टर्मिनल स्टेज है, उसमें खून की उल्टियां आनी शुरू हो सकती हैं, उसमें गुनूदगी या अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, उसमें सडन अब्डोमिनल स्वेलिंग हो सकती है सिरोसिस में, फीवर या साइन ऑफ जो है इन्फेक्शन भी साथ हो सकते हैं. अगरचे कनाडा ने हेपेटाइटिस बी और सी पे मुकम्मल काबू पा लिया है, लेकिन ये हेपेटाइटिस का वायरस बड़ा चलाक है, उसने एक और चोर रास्ता निकाला जिगर को ख़राब करने के लिए. तो ये उन लोगों को ख़राब करता है जो ओवर यूज़ करते हैं अल्कोहल का. जब अल्कोहल कितनी, ये सवाल आम हमारे जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं वो पूछते हैं कि क्या नॉर्मल लिमिट है. सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है कि उतनी अल्कोहल जो आपकी अकल को जायल कर दे. उसने ना सिर्फ आपकी अकल को जायल किया है बल्कि वो जो दिमाग है ये जो सेंट्रल हमारा नर्वस सिस्टम है वो बाउंस बैक करेगा किसी और जो वाइटल ऑर्गन है मसलन लीवर पे. तो ये जो हमारी अकल है ये ऐसे है जैसे एक बाप हो और उसके साथ मासूम बच्चे हों जिन्हें कुछ नहीं पता किधर जाना है और रास्ते में जनाब बच्चों के अगवा वाले इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं. वो बच्चों को डायरेक्ट काबू नहीं करते लेकिन बाप को वो सुला देते हैं. अब वो बच्चों को आराम से काबू कर सकते हैं. इसी तरह हमारे जो वाइटल ऑर्गन है ये बच्चों की तरह है, दिमाग जो है ये इनका बाप है. तो जो चीज़ डायरेक्ट उसके परफॉर्मेंस पे, दिमाग की परफॉर्मेंस पे, सेंट्रल प्लेस पे इफ़ेक्ट हो रही हो, वो फिर अपनी इस टेंशन को रिलीव करने के लिए इसको बाउंस बैक करता है लेस वाइटल, चाहे कितने भी बाकी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं वो ब्रेन से लेस वाइटल है. इस वजह से जो है इसका साइड इफ़ेक्ट्स होता है अल्कोहल का, उस अल्कोहल का जो इस मकदार में पी जाए कि आपकी अकल को ज़ाहिल कर दे. अच्छा, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है अल्कोहल में. अगर एक शख्स इतनी पीता है कि उसकी अकल जायल नहीं होती लेकिन पीता दिन में 2-3 बार है तो वो भी इफ़ेक्ट कर सकती है. उससे ये है कि वो कभी कभी दिल कर रहा है, ज़रूरत भी नहीं है और उसको वो स्किप करे इससे ये है कि जो आपकी पावर एडिक्शन के खिलाफ यूज होती है वही पावर आपकी इन्फेक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। ये लेटेस्ट रिसर्च है। यानी कभी कभी आप किसी एडिक्शन को अचानक झटक के उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, मुकम्मल अगर नहीं निकल सकते तो कभी कभी आप एक दिन स्किप करें, फिर आप उसमें इतनी लिमिट लें कि जिससे आपकी अकल को अकल जायल ना हो, तो फिर आपका जिगर महफूज रहेगा। और फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर रखें। इसके लिए हमारे बहुत सारे पेशेंट शवायाब हो रहे हैं क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई खास इलाज नहीं है फैटी लीवर का। तो होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है जो बगैर केमिकल ड्रग्स के, बगैर साइड इफेक्ट के, बगैर सर्जरी के आपके जिगर की बेहतरीन हिफाजत कर सकती है। अगर फैटी लीवर डॉक्टर ने कहा है कि फैटी लीवर हो चुका है तो फिर यही इलाज बेहतरीन है जो आपको अपनाना चाहिए। मैं हूँ अबरार हुसैन, मेरा नंबर नोट कर लें, मिसिसागा में हमारा क्लिनिक है 6475531100। या मैं एक और ऐलान भी करना चाहता हूँ, हमने एएम रेडियो 5:30 पे था जो है मंडे को 5 बजे से 6 बजे तक एक घंटा पूरा इंटरटेनमेंट भी और हेल्थ के ऊपर हायर किया है। तो जो ये प्रोग्राम सुनते हैं वो ऑडियंस हमारी हर मंडे को 5 से 6 बजे एएम 5 से 6 बजे 5:30 चैनल है उस पे आप सुन सकते हैं। फिर एक बार मेरा नंबर नोट कर लें 6475535100। शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, और नाल दी नाल अज दा प्रोग्राम तड़ता का असी पेश कर रहे हैं स्पैक्स एक्सप्रेस दे सहयोग नाल। स्पैक्स एक्सप्रेस तो तुसी किसे तरीके दे भी कॉम्प्रीहेंसिव आई ग्लासेस या तुसी कोई आई डिटेल्ड आई एग्जाम करवाना या बच्चियां दा कोई आई एग्जामिनेशन करवाना है तो बिल्कुल दस दिए कि इन्हां कोल अज दे रहे हैं जी। दोनों लोकेशन से डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल हैगी है और नाल दी नाल तुसी वॉक इन भी कर सकते हैं या तुसी अपॉइंटमेंट बना के भी जिहड़ा जी जा सकते हैगे। और नाल दी नाल जिहड़ा जी असी दस दिए कि तुसी किसे तरीके दे डिजाइनर फ्रेम्स या कोई कॉन्टैक्ट लेंसेस कलर्ड लेंसेस लेने हैं तो बिल्कुल स्पैक्स एक्सप्रेस पहुंच सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इन कोल जिहड़ियां जी डील्स अवेलेबल हैगी है। पहली लोकेशन हैगी 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन 410 एंड स्टील्स अदा जिहड़ा जी इंटरसैक्शन वॉलमार्ट वाला प्लाजा। दूजी लोकेशन 10635 क्रेडिट व्यू रोड सैंडलवुड एंड क्रेडिट व्यू का जिहड़ा जी है इंटरसैक्शन हैगा है। तो गलबात कर ली नंबर 905-460-8888 ते जिहड़ी है जी गलबात कर सकते 905-460-8888 ते इन्हां दे नाल जिहड़ी जी गलबात हो सकती है। अज दा प्रोग्राम तड़तक असीं पेश हरप्रीत सैनी जी दे सहयोग नाल भी पेश कर रहे हैं। हरप्रीत सैनी जी फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस संबंधी कोई भी जानकारी लैनी होवे तुसीं हरप्रीत जी दे नाल गलबात कर सकते। इन्हां दा नंबर 416-817-6500 ते गलबात हो सकती है। टिक्का जंक्शन ने अज दे प्रोग्राम नूं भी स्पॉन्सर किया, वधिया स्वादला फूड खाना है विद बेस्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस ते तुसी पहुंच सकते हैं जी टिक्का जंक्शन नाल। किया फोर 27 एंड QW दा भी पूरा जिहड़ा जी साथ हैगा। अपनी मनपसंद दीआं गड्डियां लैणा चाहुंदे आ ते किया दा नवां जिहड़ा जी ग्रैंड ओपनिंग होई सी इन्हां दे शोरूम दी, बहुत ही बेहतरीन जिहड़ियां जी इस टाइम इन्हां ने डील्स लाईआं होईआं आ। और अज दा प्रोग्राम अंजम कुरैशी जी दे सहयोग नाल भी पेश कर रहे हैं। एक्सीडेंटल क्लेम बेनीफिट दे विच जिहड़ा जी तुहाडा पूरा पूरा साथ दिंदे आ। इन्हां दे नाल किसी तरीके दे भी क्लेम प्रोसेस दे बारे या कोई होर गलबात करनी होवे सो नंबर 416-570-0157 ते गलबात जिहड़ी जी हो सकदी है।

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर। एक्सीडेंट होण ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी करदे ने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालां तो तुहाडी सेवा विच।
0: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तो ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दी चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फेंडोवे ब्रैम्पटन होवे, जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन, या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ 905-456-9900।
3: चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल,
4: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
3: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट,
4: फोर एंड अवनीजर द इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाय प्लाजा के बीच सिल्वर हट,
3: 647-339-3521,
4: 647-339-3521, 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन, सिल्वर हट।
5: जी दोस्तों, मेरे वालों यानी कि जगजीत महल वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसीं जुड़ चुके हो अपने मनपसंद प्रोग्राम सारंग दे विच। अज दे प्रोग्राम विच गल्लां बातां होणगीआं। अज दा साडा प्रोग्राम लाइव ऑन लोकेशन ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर तों होण जा रिहा है। राजवीर जी उत्थे पहुंच चुके ने, थोड़े मिंटां दे विच आपां उहनां नूं ऑन एयर करके उहनां नाल फोन ते गल्लबात करन दी कोशिश करांगे। उत्थे की अपडेट आ इस वीकएंड दे उपर, उत्थे की नवीआं चीज़ां आईआं ने, ते की सानूं उत्थे डीलां मिलण वालीआं ने। इह गल बिल्कुल सच आ वी जदों वी ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर दे उपर साडा लाइव ऑन लोकेशन हुंदा गा, उत्थों बहुत वड्डी मात्रा विच कस्टमर अपनी सेविंग करते हैं और बहुत वधिया प्रोडक्ट उतों खरीदते हैं। गे जिमें आप अज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, सूँ मैं दस देव कि अज का जो प्रोग्राम आ बहुत ही खास तो स्पैशल हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारिया नवी डील जगिया ने ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर तो सूँ मिलन जा रही है। आप आम तौर पर सोचते हैं कि साड़ी जिंदगी देम तौर पर असी दो रिश्तों बहुत ज़्यादा अहमियत दें, एक होंगी दोस्ती तो एक होंगी रिश्तेदारी। रिश्तेदारी तो दोस्ती दोवें डि रिश्तेदारी जी सू विरासत मिलती है, साढ़े खून चो मिलती हैगी, और जी दोस्ती होंगी असी खुद बनाने है। सो आप देखा भी रिश्ता जरा दोस्ती का वधिया हों रिश्तेदारी का। सो अज का जरा समा गा, अज के समय के बहुत सारे रिश्ते बहुत सारे दोस्त मित्र इदा के ने जोड़े साढ़े सोशल मीडिया के उपर ने, क्योंकि सोशल मीडिया का युग आ, हरेक बंदा अप कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता, कोई फेसबुक यूज़ करता, कोई कोई होर अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म जो यूज़ करता गा। सो जिहड़े रिश्तेदार होंदे आगे वो सानू विरासत दे साडे खून तो मिलदे आगे। तो तुसीं सोचो अपने आप दे विच वी तुहाडी जिहड़ी फ्रेंड लिस्ट की लिस्ट हैगी उहदे विच किन्ने सारे रिश्ते होणगे जिहड़े तुसीं तुहाडे विरासत दे विच मिले ने। सो इदां दीआं गल्लां बातां अज दे प्रोग्राम सुणगीआं, तुसीं जुड़े रहिणा प्रोग्राम दे नाल। राजवीर जी ग्रैंड ग्रैंड फर्नीचर ते पहुँच चुके ने गे। एक प्रोग्राम दी शुरुआत करांगे एक रणजीत बाबे दे मिठ्ठे जिहे सौंग दे नाल, उस तों बाद असीं तुहानूं उत्थों बहुत सारीआं डीलां लैके देवांगे।

0: लेते हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।
3: तुहानूं माण है कैनेडियन होण दा ते कैनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जिहड़े के इक्को ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने कैनेडियन मेड। अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटा वाला, 5 सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ। 11x11, 10x10 दा सोफा सेट तैयार करवा सकदे हो। इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क, उत्थे बहुत वड्डा शोरूम है ते पहला शोरूम है 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। नंबर है परमजीत कौर फोन दा 905-792-8053 905-792-8053। सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी दा नाम।
4: हाय चूहा ते कॉकरोच भी, सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
5: है। फिर कॉकरोच ते चूहे, ओ हाले महीना पहला ट्रीटमेंट कराई सी।
4: मैं तेनु पहला ही कहा सी सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट हुई करी जांदे आ।
5: ओ मैं ता कहना घर ही बेच दिंदे आ।
6: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नू कड्डो। टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नू कॉल करो। जेडे छोटे तो छोटे घर तो लेके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं, सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000।
7: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
3: टुडे विच लाइव गलबात करन लई हुणे कॉल करो 905-564-6444।
7: 905-564-6444।